बेशक कोई इतनी योग तपस्या कर लवे कि अगन दे बस्तर पैर लवे, इतने तंत्र मंत्र दा जानू हो जावे, बर्फ हिमालय मंदर शाही हिमालय पर्वत ते अपना घर बना लवे, ते जदों उसनू भुख लगे लोहे दी रसोई करे, पाव रोटी दी थां ते लोहा चबाउन लग जावे, एडियां रिधियां सिद्धियां आ जान, करै रसोई सार दी सगली धरती नथ चलाई, सारी धरती नू नथ पा लवे, एवड करी विथार को सगली धरती हकी जाई, तोली तरत आकाश दोए पिछे शाबे टंक चढ़ाई, ऐडी करामात दा मालक बन जावे धरती ते आकाश नू तोल के दस देवे। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ए बल रखा आप विच, फिर ए बल अपने विच भी होवे, चे जिदे सिर ते हाथ रखे ए बल उदे विच भी आ जावे, एडी वड्डी समर्था दा मालक बेशक कोई बन जावे। ते हजूर कहिंदियां बिना नाम तो ए सत नाम बिन बादर शाही, एक बदला दी शां है जिहड़ी कदे एक थां ते टिकदी नहीं, जिदी कोई वैल्यू नहीं हुंदी। इसलिए हजूर ने कहा भाई ए कर्म धर्म पाखंड जो दीसै तिन जम जागाती लूटै, आख्या जे मनुष्या जन्म सफल करना है ता निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। ऐसे सच दे बचन जदों सिद्धा ने सुने, मन नू हलूना वज्या, ता फिर ओही सिद्ध जेड़े बड़े क्रोधित हो रहे सन, गुरु नानक सच्चे पातशाह

इस संसार सागर विच किते मैं डुब ना जावां, इस संसार दे पदार्थां विच किते रुल ना जावां, इसलिए तू मेरी बांह पकड़। क्योंकि असी कमजोर हां, असी पकड़िए हाथ छुट जाएगा।

नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं ध्यान देना बाणी पातशाह आखदे।

कर दे हाय हाय। ये मत समझ पाप दा बीज बोना तो बड़ा सौखा है, जदों किकर दा बीज वेखिए तो बड़ा मखमल वर्गा बड़ा कूला होंदा है, बड़ा सोहना होंदा है, पर जदों बीज बोइए तो जेड़ा फिर पौधा उगदा वो कंडियां दा भरिया होया, जिथे हथ लाएगा कंडे ही कंडे हैं। पाप दा बीज तो बड़ा प्यारा लगता है पहला, पर जदों प्रफुल्लित होंदा ही ना फिर ये जीवन नूं कुंभी नरक बना देंदा है। इसलिए हजूर कहते हैं पापा तो डर, कोई चंगा कर्म करना है तो उस वेले कर लै, जे मन विच फुरना होया किसे पाप करन दा तां सोच उसनू देरी पा, हो सकता है कोई तेरा चंगा कर्म तेरे सामने आवे तू पापा दे रस्ते तो हट जावे, इसलिए कह रहे हैं।

बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी, मुन इंद्र महा शिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा,

गुरु नानक दा नाम जिना ने भी रचना ते लियांदा फिर ओ जन्म मरण तो रहत हो गए से फिर गर्भाश न परियारे तारिया जहान लेहा अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनू तन के हा तिन जम नेड़ ना आया जिसमें भी प्यार और सिदक दे नाल एक वेरा प्यार नाल कह देता तन गुरु नानक जमदूत नेड़े नहीं आ सके। गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नूं तारदे होए एक जंगल विचों विचर रहे हन। एक छोटा जिहा पिंड आया जिन्हां दा

0: कोई अमीरी नहीं छोले उबाल के बेच लैंदा है, उदे विच्चों चार पैसे बचदे हन, ओ उदे नाल निर्वाह कर लैंदा ते बाकी दा समा सेवा सिमरन विच बतीत कर देंदा है। गुरु रामदास पातशाह जी दे मन विच ख्याल आया, पाई सोमा सवेर शाम हर वेले सिमरन विच जुड़िया रहिंदा है, विहार तो समा मिलदा है, सेवा करदा है, वेखिए कुछ इहदे अंदर माया दी पकड़ भी हटी है जां माया दी पकड़ उवें ही है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।
1: वाहिगुरु।
0: गुरु रामदास पातशाह आए कहन लगे, सोमिया अज दी जितनी वटक होई है सानू दे दे। भाई सोमे ने धन भाग समझे, जितनी वटक होई सी हजूर दे अर्पण कर दीती। धन गुरु रामदास पातशाह ने वह पैसे मजदूरां नूं वंड दिते। दूसरे दिन फिर आन खड़ोते, सोमिया अज भी जितनी वटक होई है सानू दे दे। भाई सोमे ने सोचिया, भाई गुरु त्रुठा है, गुरु ने मैनू संभालिया, क्योंकि जिदे दर ते लक्ष्मी हाथ बद्दी खड़ी है, देवी देवते पीर पैगंबर औलिया जिदे हुक्म दी उड़ीक विच हन, जिसते दादी चरण धूड़ी लै के अपने तन भाग समझदे हन, ओ गुरु एक कंगाल पासो वटक मंग रहा है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।
1: वाहिगुरु।
0: ए उदी बख्शिश है, रहमत है। भाई सोमे ने जितनी वटक होई सी हजूर दे अर्पण कर दीती। इतिहास विच लिखिया है कि धन गुरु रामदास पातशाह छे दिन लगातार आउंदे, भाई सोमे पासो वटक मंगदे ते भाई सोमा हजूर दे अर्पण कर देंदा। सतवें दिन जदों आए तां भाई सोमे ने आप ही जितनी वटक होई सी हजूर दे अर्पण करनी चाही, तां धन गुरु रामदास पातशाह कहन लगे, सोमिया अज असी लैन नहीं आए, अज देन लई आए हां। भाई सोमा चरणा नूं लिपट गया, ओ सच्चा पातशाह, ओ मेरा दे साईं, असी तैनू की देन जोगे हां, असी तां जुगा जुगंतर तेरे पासों ही लै रहे हां, और तेरे दित्ते होए विच्चों जे तिल मात्र देवी दित्ता तां की दित्ता है, तेरा दिया तुझे क्या अर्पूं, तेरे दित्ते हुए विचों जे तिल मात्र देवी दिता है तां क्या दिता है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।
1: वाहिगुरु।
0: भाई सोमे ने नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते, ते ज्यों ज्यों चरणा नूं लिपटदा अंदर दा शीशा साफ हो रहा है। जदों सिख गुरु दे चरणा ते मस्तक रखदा है तां पापां दे छोर कट जांदे हन, अंदर दा शीशा साफ हो जांदा है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु रामदास किसे प्यार विच आके भाई सोमे नूं वरदान दे रहे हन, सोमा शाह वे परवाह, ओ सोमिया तू वे परवाह होवेगा, सोमिया तू शाह सदीवेगा, इस दुनियादारी दा ही नहीं तेरे परमार्थ विच भी, तेरे नाम विच भी बरकतां पैणगियां, तेरे नेत्रां विच बरकत पवेगी, जिस नूं एक वेरी वेख लेगा वो निहाल हो जावेगा, तेरी रसना ते बरकत होवेगी, जिनू वरदान दे देवेगा, जिनू एक वेरा बचन कह देवेगा वो बचन कदी खाली नहीं जाएगा, तेरे हथां विच बरकत होवेगी, दे नाल भी तू आशीर्वाद दे दिती, उदा लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला हो जाएगा। उच्चारण करो श्री

नवे घर दियां वधाइयां मिलन लग पईयां और एक पड़ोसन जिहड़ी सी उहनूं इन्ना घर पसंद आ गया उहदे नामदेव दे खेड़े पै गई। कहण लगी, नामदेव भई मैनूं एक गल दस।

पुछदे कि तन दा चोला किवें रंगा ते मन दा चोला किवें रंगा। ये सवाल ही ऐसा है, ये बोली ऐसी है, आम बंदा इस गल का जवाब किवें देवेगा।

पहला तन का चोला रंगेगा ते फिर मन का चोला रंगेगा। पता ही नहीं किवें रंगना, जरा ध्यान दो। अज पता लग जाए कि तन का चोला किवें रंगना।

अज समा मिले सत संगत की सेवा कर ली हजूर कंजनी गंगा असी भी अज अपने तन का चोला रंग ली मात गंगा जी ने आख्या पाछया तुहाडे चरणां ते जिहड़ा भी आके मत्था टेक लैंदा उहदा तन दा भी चोला रंगिया गया ते मन दा भी रंगिया गया नहीं गंगा अजे भी बड़ी भुख है मेरा चित करद मैं हर वक्त सात संगत की धूड़ी विच बैठा रहा धन गुरु अर्जन देव पातशाह अजे दिन नहीं सी चढ़िया कड़ा प्रशादी देख की नाल जल ले लिया ते नाल पखा ले लिया बीबिया वल माता गंगा जी हो गए ते गुरसिखा वल गुरु अर्जन देव पातशाह हो गए ते ज्यों ज्यों माता गंगा जी पखा चलते ने ते बजुर्ग मावा कहंदी बचिए वाहेगुरु तेरी आस पूरी करे एक इस गल का नहीं पता दुनिया नूं दातां देण वाला दुनिया जिहदे कोल मंगदी है वह तुहाडी सेवा पै कर देना जी ते इधर बजुर्ग कहंदे गुरसिखा तू बड़ा चंगा चंगा ते है ही सी ते जिहड़े नेड़े गुरसिख सन गुरु साहब दे ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ

किस तो आप कराए। हुण तुसी दावा करके कह सकते हो जदों घरां नूं जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वेख्या असी बैकुंठ क्यों

थोड़ी देर पहला माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह कोई पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया है ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहने गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब का दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं करांगा। प्रेरणा ले ली इस गल तो जे किसे गुरसिख दा जोड़ा सानू चुकना भी पवे ते मन विच नफरत आ जांदी। हसूर जोड़ियां विच खड़े हैं रुमाल लेके एक एक जोड़े नू साफ करी जांदे। संगतां अंदर गईयां बेबल हो गईयां। जिस गुरु नू लपण वास्ते जिस गुरु दे अगे मत्था टेकणा ओ ते सिंघासन ते विराजमान ने। बाबा बुड्ढा जी तो पुछिया कि बाबा बुड्ढा जी ने चारे पासे तके नजर पई नेत्रां चो जल आ गया आख्या ओ गुरसिखो जिस ते चरण परसन वास्ते आयो ओ ते तुहाडे जोड़ियां च खड़ा है। ते आके बाबा बुड्ढा जी ने पुछिया पातशाह जोड़ियां विच की कर रहे हो। संगतां दर्शन करन वास्ते आई हैं जोड़ियां च की लब रहे हो। एक एक जोड़े नू पातशाह वेख रहे कहने बाबा बुड्ढा जी थोड़ी देर होर ठहर जाओ मैं एक एक जोड़े नू चुक के तां वेख रहे हां मैनू किते गुरु नानक दा जोड़ा लब जाए। मैं सुनिया कि जदों साध संगत कठी होके टुर पवे विच गुरु नानक भी टुर पैंदा। मैं सुनिया कि साध संगत आई है ते उत्थे भी मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते तां गया सी कि किते सेवा करदियां करदियां किते गुरु नानक दे चरण भी मेरे हथ आ जा। मैं गुरु नानक दा जोड़ा ढूंढ लवां। हजूर दे नेत्रां च वैराग आ गए। अक्षय बाबा बुड्ढा जी सात संगत नूं कह दिओ थोड़ी देर होर रुक जा। मैनू इस रस तों ना तोड़न गुरु नानक दा जोड़ा लब जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहब पहुंच जावांगा। इतनी निमत्ता जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया। जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता कि धरण गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन।

आगम आगोचर अत वड़ा बड़ा वड़ा है अतुल जिन्हों कोई तोड़ नहीं सकता उदा कोई अंत नहीं पा सकता उस राम कोई तोड़ नहीं सकता।

किने ना पाई है। उस परमेश्वर की कीमत कोई नहीं पा सकता, ते ना ही पैसों दे नाल ओ राम किधरों मिलता है। गुरु साहब ने कहा, जो कोई इंसान ये कहे कि पैसों दे नाल मैं रब नूं पा लवांगा,

जद तक मनो नहीं कहते। एक दुध वेचन वाली गुजरी नदी पार करके एक पिंड दुध वेचन आया करती सी। एक दिन वो दुध वेच के जद वापस तुरन लगी ता मंदिर दे विच बहुत सारे लोग बैठे सन ते कथा हो रही सी। मंदिर दा पुजारी कथा कर रहा है कि जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तो पार हो जांदा है। उस गुजरी ने कथा सुनी, मन विच ये गल वस गई कि जेड़ा राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तो पार हो जांदा है। ए गुजरी कथा सुन के अपने घर नू वापस मुड़ी, जदू नदी पार करन लगी

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा है। ए ता छोटी जी नदी है जे संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदी। मन विच भरोसा राम ते बजदी राम राम करदी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदियां देखदियां तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई। पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती ते तुरदे ने और देखदे देखदे आराम आराम कहंदे आ ए नदी पार कर गई। हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लें। एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लेनी है पानी उते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राह मैनू मंदिर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नू घर बुला के ओनू रोटी खुआवा प्रशादा छकावा ओदी सेवा करा। गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसी तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची। बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नू पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको। पंडित जी तैयार हो पे अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पे। तुरदे तुरदे जदू नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नू के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है। गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावांगे। पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जावे। गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पीछे पीछे आओ तुसी ते कदू दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी हां ते नदी पार कर जानी हां। कह के राम राम कर दी ए गुजरी नदी दे उते पानी दे उते तुरन लग पई। ए देख के राम राम कहंदे पिछे पिछे पंडित जी भी तुर पे। जदों थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पे। जदों डुबन लगे ते उस गुजरी नू कहन लगे ए आप ते मरेगी नाल मैनू भी मारेगी। ओ गुजरी ते राम राम कहंदी नदी पार हो गई ते पंडित जी डुबदे डुबदे मसा बचे ते बड़ी मुश्किल दे नाल किनारे ते आके लगे। हुण सवाल ही पैदा हुंदा है राम राम ओ गुजरी भी करदी है ओ नदी पार कर गई राम राम ए पंडित भी करदा है पर ए डुबदा डुबदा बचिया क
कारण की कारण हुई जो गुरु अमरदास पातशाह कहते ने कि राम राम की सारा संसार कहते पर सारे नु मिलता नहीं मिलता किनू जेड़ा पखंड ना करे बल्कि मनो राम राम।

उस पुजारी ने ते राम नु खड़ौणा ही समझे, क्योंकि राम नु मन विच नहीं वसाया। उस गुजरी ने राम नु राम समझिया, वो नदी भी तर गई ते संसार सागर तो भी तर गई। हुण कबीर साहब कहिंदे ने, मैं बौरा हो गया राम दे नाम दे नाल लग के। ओ बौरा नहीं जिन्हों लोग पत्थर मार देने,

लोग जेड़े ने ओ मैनू कहंदे ने कबीर बौरा है, कबीर बौरा है। क्यों? इस वास्ते कि ना ए पूजा करदा है ते ना ही ए फुल ते ना धूप जगांदा है। जो हो बौरा तो राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। ए जड़े लोग ने ए मेरा मरम, ए मेरा दर्द, ए मेरा प्यार नहीं।

कपड़े नु रंग चाड़ो तो वो सारा रंग उतर जाता। इसे तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नु वखरा वखरा करके समझदे ने, समझो कि उन्हां उते राम दा अल्लाह दा वाहिगुरु दा रंग चढ़िया।

रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना जड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा। साहब जी कहते हैं सिख किवें हो सकदा, ते रहत तो बिना वो चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

लाल तू भाई जिन्ना मर्जी प्यार कर पर पराई औरत नू अपनी मां समान समझ जिहड़ा ये गल्लां मन्नेगा साहिब जी कहिंदे ने ओ असल विच रहतवान।

0: थाकने सौ खाकने सो तो थाकने नहीं दिसता
1: तनिया मैं उन्हें दिसता सच आखते हो हां तनिया सच आखदा खाकर जी तुसी मैनू दिसते हो इसका मतलब तुसी तलोचन भी दिसते हो नहीं तनिया मैं भैड़िया अखा वाले नहीं दिसता जिन्हों का मन होर भुख होर हो मैं नहीं उन्होंने दिसता फिर भगवान जे तू मेरे कोल रहना है तो फिर तुम तरलोचन दर्शन देने पैणगे तनिया नहीं यह झूठा है फरेबी है मकार है हेरा फेरी करता है मेरे नां ते नहीं प्रभु जे ए ना हुंदा तो मैनू तेरे दीदार नहीं होने हुणे हुण भगवान नूं तन्ने दे कारण करके तरलोचन नूं भी दर्शन देने पए तरलोचन का भी दर्जा भगतां विच आ गया किहदे करके किरती ने संगत की संगत का दर्जा की होया फिर तन्ने ने मंगिया कि ऐना कुछ मंगया कोई भी संसारी ऐना कुछ मंग नहीं सकया एक ताजन तुरी चंगेरी करके कहे चंगी जंत ना ले दे मंगी पातशाह घोड़ी वह होवे जिहड़ी किसे कोल होवे बिस्तरा ऐदां दा होवे जिहड़ा बादशाह नूं नसीब ना होवे इस्त्री एडी खूबसूरत होवे जद रोटी

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साढ़े अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेबे जर साहेबे जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਛਿੰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਏ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ।
मुहि दूजी नाही ठौर जिस कह हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे तुर जाता है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अगियों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहते मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल तुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उथे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है ते इथे अगे आ जा, तुसी ता कहीं जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मल लिया है तेरी दहलीज मल ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आदीठ धर्म आदीठ धर्म अत टीठ करम। वाहिगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आदीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासां करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है, आदीठ धर्म अत टीठ करम। जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदों तक कई बारी इनू शक्का शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी अपनी तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा तार लिया मोहे